0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
7: City FM 89.
8: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
9: एक्सप्लोर करो कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर एडमिशंस ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स इनफिनिट पॉसिबिलिटीज
10: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस
11: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
12: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
13: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
14: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशंस ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
7: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में, और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
10: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो,
11: आहा।
10: पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
12: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
13: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
10: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Explore karo, kuch new karo at United Charter Schools. Kyunki yahan har study venture banta hai ek adventure. Admissions open for all classes up to matriculation and O-level. United Charter Schools, infinite possibilities.
5: A project of Beacon House.
6: Hire kar naya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: Behtareen insurance har waqt aapke saath. Jaise Easy Paisa Insurance Marketplace, 50 se zyada plans, behtareen coverage, khas discounts aur sirf 24 ghanton mein claim hasil karne ki sahulat. Khawateen ke liye dedicated plans aur 25,000 top डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
8: नाज़रीन ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
9: बंद करो ना ढक्कन
10: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
11: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
12: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Trending today.
3: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
8: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: City FM 89. We're playing your song.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
1: हायर करना है नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic bundle lagao. Aur pao 2000 rupaye tak ka

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show was brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
1: Coming up next.
0: Non-stop hits.
4: City FM
0: 89.
6: Trending today.
7: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
2: City FM 89,
8: where are you playing the song? Naya account bhi kal parso kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
9: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
10: न्यू टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक
11: बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ
12: रॉक दैट डोंट स्टॉप रॉक दैट डोंट स्टॉप
13: कीप द ब्रेथ ऑफ दैट अल्कलाइन

0: 89.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: We're playing your song.
3: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
2: वी आर
4: सिटी एफएम 89।
5: यू आर लिसनिंग टू
6: नॉन स्टॉप हिट्स।

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
6: City FM 89.
7: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
1: सिटी 89
8: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89 वी
2: आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
9: नॉनस्टॉप हिट्स
10: न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: 89.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: Shared bundles. Wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi. Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
6: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
7: अटेंशन ऑल पार्टी स्टार्टर्स, वीकेंडर्स, ऑल नाइटर्स, सेलिब्रेशन सीकर्स, बीट किकर्स, थ्रिल सीकर्स, डिस्को लवर्स, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance. Because this is Beat Camp.
8: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight. Only on City FM 89.
9: Hold on! Special delivery coming through!
10: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
11: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
11: It's as easy as 03142-898989.
10: Save our number now and WhatsApp us.
5: City FM 89. We're playing your song.
11: You're listening to
13: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash.
5: अभी बैंक बनाता है आपका आज, अभी डाउनलोड द ऐप, अभी अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
6: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
1: City
6: FM 89.
7: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
8: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
1: सिटी 89. यू आर लिसनिंग टू
0: Non-stop hits.
9: No talk.
10: No talk.
11: No talk.
12: No talk.
13: Just you and the music.
14: Back to back starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
3: 89
4: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
0: नॉन स्टॉप हिट्स

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89.
7: You got me going crazy.
8: Trending today.
9: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
1: City
10: FM 89.
11: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
12: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
13: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशन्स ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. United Charter Schools, infinite possibilities.
14: A project of Beacon House.
15: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
16: Hire kar naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein, aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
17: Behtareen insurance har waqt aapke saath, jaise Easy Paisa Insurance Marketplace. 50 se zyada plans, behtareen coverage, khas discounts, aur sirf 24 ghanton mein claim hasil karne ki sahulat. Cover 3 ke liye dedicated plans, aur 25,000 top doctor. डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: City
1: FM
0: FM
1: FM
0: FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89. We're playing the song.
5: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशन्स ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
6: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इनवर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
11: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
12: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
13: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.

0: your song. Only on City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM, FM 89.
0: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
4: Pediasure se Ileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
5: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: नाजरीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
7: बंद करो ना ढक्कन।
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
9: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
10: Naya account bhi kal parson kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. Abhi bank banata hai aapka aaj abhi. Download the app abhi. Abhi bank. Financial freedom for all.

0: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash.
1: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
3: You're listening to
4: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: Naya account bhi kal parso kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. Abhi bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
7: Kya aap jante hain? کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں, اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
8: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
9: IoT seems difficult. Four sections. Limited time, high pressure.
10: Listening, reading, writing, speaking.
9: Not with AEO Pakistan.
10: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
9: Learn strategies that actually work.
10: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
9: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
11: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
12: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी. नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी. अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
13: सिटी एफएम 89. वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
0: You're listening to
14: The Rush Hour with ABD.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
6: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशंस ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
7: A project of Beacon House.
8: Pediasure se Ileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
9: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
10: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
11: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
12: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
13: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहाँ टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री, डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 डेज. आज ही बुक करें अपना आइल्स ऑन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान's मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. बुक नाउ एट www.aeo.com.pk.
14: Foreman Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
15: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show was brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
1: This show was brought to you by AEO Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
5: Coming up next.
3: Future Sounds.
6: City FM 89.
7: Trending today.
8: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
3: City FM 89.
9: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
4: City FM 89.
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश
11: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
12: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
11: वी आर
4: सिटी एफएम 89
11: फ्यूचर साउंड्स
13: New tunes, hot beats, where your next favorite track finds you.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
3: City FM 89
4: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो अभी पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
5: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
1: Your drive along companion. You're listening to
6: Future Sounds.
1: Future Songs.
7: Vibe with us, your music.
8: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 PM.
3: City FM
4: 89.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
6: City FM 89.
7: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ cityfm89
8: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग रियल फिक्स.
9: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
10: City FM 89
11: sounds different.
12: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
13: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
14: I want to learn big things.
13: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
14: I want to be the fastest.
13: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
14: I want to grow up like everyone else.
13: Because every child is

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड दी ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
5: सिटी एफएम 89.
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
5: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
7: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ. अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड दी ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
8: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
9: Attention, the standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
9: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
11: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
11: The rush hour with ABD.
9: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
10: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds.
1: Future Sounds.
10: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
1: City FM 89.
7: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
8: सिटी एफएम 89
9: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश
1: 89
2: वेयर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
10: फ्यूचर साउंड्स
2: फ्यूचर सॉन्ग्स
11: Vibe with us, your music.
12: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज़ कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज़ कैश है ना।
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
2: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग व्हील फिक्स।
5: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।
2: City FM 89, we're playing your song.
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89।
2: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
1: यू आर लिसनिंग टू
7: फ्यूचर साउंड्स।
2: फ्यूचर साउंड्स,
8: new tunes, hot beats, where your next favorite track finds you.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
4: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
5: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
6: Sound of your city. City FM 89.
1: You're listening to
7: Future Sounds.
8: Future Sounds.
9: Stay fresh, stay lit.
10: New music drops right here.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 10 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
0: Coming up next.
1: Non-stop hits.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: U2 and Martin Garrix have released a new collab titled Fireflies. U2 guitarist The Edge debuted the track with Martin Garrix during the latter's set at Tomorrowland. The track is out on all platforms.
1: City
8: FM
1: 89.
9: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
10: आई ग्रो अप आई वांट टू बी स्ट्रांग
11: फॉर मेनी चिल्ड्रन इन पाकिस्तान दैट चांस इज ऑलरेडी स्लिपिंग अवे 4 इन 10 चिल्ड्रन अंडर 5 सफर फ्रॉम स्टंटिंग
10: आई वांट टू लर्न बिग थिंग्स
11: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
10: I want to be the fastest.
11: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
10: I want to grow up like everyone else.
11: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
12: Nurture today, strengthen tomorrow.
11: Act, a Dawn Media Initiative.
13: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
4: City FM 89.
14: New talk. Just you and the music.
15: Back to back starts now.

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: Follow us at CityFM89 on TikTok.
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz V5 Fantastic Bundle लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए Jazz Cash है ना.
5: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
6: City FM 89.
7: You're listening to
0: Non-stop

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
0: City FM 89.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
5: एक्सप्लोर करो कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर एडमिशन्स ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स इनफिनिट पॉसिबिलिटीज
6: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
8: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back
9: starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: 89. एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशंस ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
1: A project of Beacon House.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
4: You know the city, but you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't. I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on what's happening in your city every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
5: City FM 89, we're playing your song.
6: Hold on! Special delivery coming through!
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
5: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

वाला बटन वो करता रहे। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, उसके नीचे वाला वो करते थे। हाँ, उसको दबा दें, उसके नीचे वाला। हेलो हेलो हेलो, माइक फोर टेस्टिंग टेस्टिंग, माइक फोर। इसके लेवल देखें। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, माइक फोर टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो हेलो, माइक फोर, माइक फोर।